0: जोजलपाथा नेपाल समूह चिन्छ सब पी खुद अनलाथो सप्तमी थो रेडियो नेपाल ख अनिना दिशा जिरु विपाके नेपाल भाषा या समाचार। राष्ट्रिय सभा मिगे बैठक के अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक 2081 पारित आगुदु विधेयक द्वितीय सलय झोले लुङ्गु न्यासते गुलिसबिया दिशा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल विधेयक समुदाय स्तरीय प्रचलन दुगु परम्परागत ज्ञान संस्कृति सम्पदा संरक्षण व पुस्तान्तरण न्यायको अधिकार सुनिश्चित यागु कना दिल विधेयक द्वितीय सलय झोले संसद नेपाल सरकार सन् 2010 अभौतिक सांस्कृतिक महासन्धिया पक्ष राष्ट्र जोगुली थो सन्धिया प्रावधान त छेलाबुला भइगु विधेयक मागु कना दिल अध्ययन बैठकके वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 विशेष सम्प्रति निधि सभा समूहको हसना टेबल जुगुदु थयानी राष्ट्रिय सभा मेगा बैठके नुआइपिन संसदीय सम बजारे क्यान्सर लोया वासके छेलिगु वासया मो जुगुली सरकारी अध्ययन कोशला दिशे मजी मकाको वासया मो मजुकेता प्रभावकारी पला निहाकेता इनाप्यागुदु अध्ययन संसदीय सम राष्ट्रिय सभा सम खालिजोया चोङ्गु निमा सदस्यता तुरन्त पदपूर्ति ज्ञाता होल्डिङ सेन्टर दुगु विस्थापित सुकुम्बासिया हात्या याक्ना नहङ्केता सरकारी अध्ययनको सल्लाह दिल राष्ट्रिय सभा मेगु बैठक जेठ 13 गते बुधबार हिनेसिया छताइजुया चिङ्यागु मिनेटे चोनिगु गोसादु। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव प्रदेश सभासँग विश्वास मत कया दिगुदु प्रदेश सभा बैठक एमिक मुख्यमन्त्री यादव या पक्ष खुइनिमा दुज तेसम विश्वास मत कयादीको खस मुख्यमन्त्री तयादीको विश्वास मत नापाया प्रस्ताव विपक्ष सुई खुमासियागु मत लागु प्रदेश सभा सभामुख राम आशिष यादव प्रदेश सभा यात कनादिगु ख बैठके मिग सक्षिमा प्रदेश सभा दुज तेसम बोधि कयादिगु ख। कास्की जिल्ला अदालत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाया सभापति रवि लामिछाने नापा गितेन्द्र बाबु राई जीवी व छविलाल जोशी संगठित अपराध सम्पत्ति शुद्धिकरण नापाया मुद्दा लिँदा कायता आदेश बिगुदु जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलवासे इजलास सहकारी ठगी पाखे अभियोग दाबी कायम दुगु तर मेघ मुद्दा अभियोग दाबी कायम मदैगु याना संशोधन यानागु कास्की जिल्ला अदालत श्रेष्ठदार राजन खनाल जानकारी बिया दिल भएका कथन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की बिगु निवेदने लामिछाने नापा मेपे प्रतिवादी दत्ती छगु संगठित अपराध सम्पत्ति शुद्धिकरण नापा कसुर व राष्ट्र बैंक नापा या कसुर कथा अभियोग आ मजुगु याना संशोधन जुइगु अदालत आदेश दु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने पार्टी नापाङको महाधिवेशन पूर्ण कथन ठिन्ठे बल्ला जुइगु ध्या दिगुदु मिग कोशी तथा मध्य प्रदेश निर्वाचित रासोपा संसद दती समधाल ज्यासोले वैकल महाधिवेशन नेतृत्व लिएको विशेषण सुदथिन दबाब मचिगु धात थुइका दिलसा रासोपा वैको असार 7-9 गते तक चितवने पार्टी नापाङको अधिवेशन याटेङ्गुदु रासोपा संसदीय दलीय कार्यालयन्तरबारे चोङ्गु समधाल ज्यासोले सभापति लामिछाने महाधिवेशन स्वच्छ व ढिन्डे बल्ला जाइगु कना दिल समदाल ज्याजोले बोती काइपिन सांसद वया चोङ्गु महाधिवेशन नापा प्रतिनिधि सभा सांसदीय कथन थथगु भला विशेष न्यास नापा तयादिगु ख। संविधान संशोधन बहस पत्र दिएकेगु कार्यदल 2083 सचिवालय चाहिँ सकल मनु नापा राय सल्लाह फुङ्गुदु संविधान संशोधन प्रक्रियासँग फुक्क नेपाली मनुतेगु बोती सुनिश्चित याइगु आज कार्यदल हेनो दिने लिखित सुझाव फुङ्गुनन्दु कार्यदल थिति राजनीति दलसँग चोया सुझाव फोङ्गु दुसा कार्यदल थिति इले संविधानविद कानुनविद वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व प्रशासक पूर्व कूटनीतिज्ञ संचारकर्मी राजनीतिक व्यक्तित्व नापा न सहल व सुझ मुङ्के धुङ्क गुदु मडिको वोगु वाल खुसी बाव चलाउ वना पाँचथरिया याङ बर गाउँपालिका एक वो दुई सा तथङ्गु छेटी छेङ्गुदु उगुलागा मिगो सनिल तस्कौँ वा वोगु ख वा वे धुङ्कानी जखया खुसी व ढले वोगु बा व चलख सडक ता व चिची धुङ्गु ताँचा त सेङ्का बिगु व सर्वसाधारण तेगु छे नाफा सेङ्का बिगु दु दोभाने खुसी तमोर खुसी व मध्य पहाडी राजमार्ग जखया लागा वगु खुसी बालन देखा चङ्गु मोटर रेबल लुम्बिनी ताया फुक्क संरचना नाफा सेङ्का बिगु अनचौँ फेजला खला पेन्सन थागु दु रूपन्देही या लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका नक्कली नेपाली नोट छापे याइपी ज्याखेल हावा पिनी मसिता चुङ्गुदु इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीसँग कटेजुगु प्रहरी पुचसँग गोप्य सूचना या लिदांसा अनुसन्धान याना वम्बले नक्कली नोट छापे याइपी व कारोबार याइपिनीगु गिरोह गतिविधिसँग लुइकागु व निमसिता नियन्त्रण कयागु धागुदु जोपिले भारत उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर नौगढ ककर हवा यामा सुइचा दुमा अब्दुल हमिद व रूपन्देही लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 11 चोनीमा मसिनाका या निनी दुमा बिक्की दैमा अनिल पासिया जोनागु प्रहरी यता पुदु ये सुनिग पिहावानीगु तहागु लया सार्वजनिक जोलस यात्रु तेगु लगेज व झोलाके ट्याग छेलिगु जुगुदु मनु तेगु सामान सुरक्षित देखेगु झोला मतनिगु व महिलीगु नङ्केगु व सार्वजनिक यातायात यात अझ व्यवस्थित देखेगु आज नापा थो प्रणाली छेलागु धागुदु थो विशेष मिग ये स्वनिग ट्राफिक प्रहरी कार्यालय व राष्ट्रिय यातायात व्यवसाय महासङ्घदेखि औपचारिक कथा सम्झौता नापा यागुदु सम्झौता पाउँछ यहाँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख नापा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारी व राष्ट्रिय यातायात व्यवसाय महासङ्घ या नायक सरोज सिटौलादेखि लाचिन्त अगुदु सरकार संगीत रोयल्टी प्रतिलिपि अधिकार व बौद्धिक सम्पत्ति नापाया कसौँ ख व प्रणालीगत हाठ्या या अध्ययनता जाँच व समिति निसङ्गुदु संस्कृति पर्यटन व नागरिक उड्डयन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदीय कार्यालय ध्यान कोषाले धुङ्कानी लक्ष्मण विद्यारी शेष्य नायस्वी संज्ञामा दुजया समिति निसङ्गु ख बिहिबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मन्त्री स्तरीय कोची नापाखे समिति निसोनागु मन्त्री खड्गराज पौडेलिया सचिवालय जानकारी बिगु ख शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल व नेपाल भ्रमण दिमा बेलायत मन्त्री सीमा मल्होत्रा दति नाप्लाज जुगुदु सिंहदरबारे जुगु जाझोले नेपाल व बेलायत दतिया ताइलन सिंह कूटनीतिक सफुयाता अझ सेलाकु से शिक्षा व कासा लागा रणनीति सहकार्य तप्याकेको विशेष खलाबला यानाको मन्त्रालय धागुदु समानता नापा इन्डो पेसिफिक सोइमा बेलायती मन्त्री मल्होत्रा सोनुयाङका भ्रमण नीति मिग नेपाल थेङ्का दिगु ख नाप्ला झोले निगुदे दथ्यो शिक्षा लागया विकास नीति जुयासँग साझेदारी ज्याजो वैगु दिने या फैगु सहकार्य विशेष विचार कालबिल जुगु थागुदु पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साला निर्माण लागे खने दया चोङको हाट्या नङ्केत सरकार तयार जुयागुले ढुक्क जुया ज्यायता निर्माण व्यवसाय यता इनाफेना दिगुदु प्रतिनिधि सभा कथया पूर्वाधार विकास समिति मिग सिंह दरबारे गोसागुगु मध्य पूर्वे नेना चोङ भुया हुने सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण लागु हाट्या विशेष सल यायता मन्त्री लम्साला निर्माण जोलैया मु समायोजन एन कानुन कथन चुइगु निर्माण व्यवसाय हाठ्या सरकार ल लागु कना दिल मन्त्री लम्साला निर्माण व्यवसाय त निर्माण या ज्याके लिपामला कु से गुणस्तरीय सम्झौता मया त इनापिया से खरिद सम्झौता मापदण्ड कथ इलेहे ज्यापोङके त इनापेना दिल सांसद पिसा कारागार व प्रहरी हिरासते दुगु अवस्था भिङ्कु से कैदी बन्दी दथिया विभेद हिरासत दुने सिगु व मानव अधिकार उल्लङ्घन या झाँका या विशेषण आप्लन ध्यानको सल्लाह दिगुदु प्रतिनिधि सभा कथा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति मिकिया बैठक सांसद सन्देह युगको कारागारदेखि क्षमता शिवे न्यागु गुना उप कैदी बन्दी तया न्याका सङ्घ तया दिल सांसद पिसा कारागार यता सजाय बिगु लागा जक मजुसे भिङ्के गु व पुनस्थापना केन्द्र देखे मागुली भव्या दिल बैठके सांसद तिसा लङ्गु विशेष लिसबिया दिसे प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्के अनुसन्धान प्रणाली यता आधुनिक शैली यङ्के मागुली कनादिगु खसा हिरासते अवस्था दयनीय जुयाचङ्गु स्वीकार्या से महानिरीक्षक कार्के भेन्टिलेसन चिकेगु उजुरी प्रणाली यता प्रविधि मैत्री देखेगु कुत जुयाचङ्गु वैकलन जानकारी बिहा दिला अथियाना बैठके कारागार व्यवस्थापन विभाग भदौ 23 व 24 गते या जेन्जी विद्रोह या इले विश्वनाचौँ पि पे झिम्पेदो त्या झिम्पेदो ट्या झिम्पेदो ट्या कैदीबन्दी मध्ये अझन पेदो कैदीबन्दी त विश्वना चङ्गुहे जुगु न जानकारी ब्यादिल। सरकार संचार माध्यम यता पारदर्शी देके मागु थागुदु प्रविधि प्रतिनिधि सभा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठक सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा सरकार यता नापान जवाबदेही देके गु याना संचार माध्यम थहे जवाबदेही जुई मागु कना दिल। डिजिटल नेपाल अभियान यता मड्डी कन्ह्याज्याता सरकार प्रतिबद्ध जुयागु कना देशे मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा मन्त्रालय कथया थिति निकाय तेगु पुनः संरचना नीति आपला अध्ययन जुया चङ्गु व सरकार नेपाल थगु सेटेलाइट नीति न कुत याना चुनागु बैठक यता जानकारी बिया दिल। बैठक संसद पिसा सरकार भुया प्रक्रिया यता विस्थापित जुहीको याना ज्याया मागु डिजिटल कक्षा कोठा तेगु अवधारणा निज्याके मागु विश्वविद्यालय सन् डिजिटल प्रमाण पौत बी फैगु याना ज्या निज्याके त ब ब्यादिगु ख। सरकार भर्खर ईद या लसत्या जेठ 14 गते सार्वजनिक विधा बिगु कोचिगुदु गृह मन्त्रालय मेघ विज्ञप्ति पिथ से मुस्लिम आयोग लिको वोगु पौ कथ थुसी जेठ 14 गते बिहिबार भर्खर ईद वोगुले सार्वजनिक विधा बिगु ख। मन्त्रालय पिथङ्गु नेपाल राजपौले भर्खर ईद या सार्वजनिक विधा बिगु व्यवस्था दुगु ख। नेपाल मेडिकल काउन्सिल कानुन अख थगु नानी हने तया तगु डाक्टर डा ख चिकेता उजम्बिगुदु काउन्सिल निमित्त रजिस्ट्रार डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डे न्यागुहे विधाय स्वास्थ्य कर्मी व मनुतेस थगु नान्ह्याने नियम अख डाक्टर खगु छेला चङ्गुले डाक्टर खगु झिङ्यानु दुने चिकेता उजम्बिगु ख। काउन्सिलले दर्ता जुपिन चिकित्सकको थगु विधागत परिषद एन चिकित्सक उपाधि विभिषण जक्क डाक्टर खगु छेले दैगु वेकलङ्कना दिल। आदेश पिनिया बुख चिनिया साँची प्रान्त छगु कोइला खाने ग्यास मुया मोतिना च्यामा मनुष्यगुदु खाने दुने सुई च्यामा तकेना चङ्गुदु खाने दुने कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास सीमा सिबे उपदुगु हुने मनुष्यगु धागु ख खाने निस व पी नेमा ज्यामित ज्याना चङ्गु ख। पाकिस्तान प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ थौ चिनिया औपचारिक भ्रमणे जातियङ्गुदु चिनिया भ्रमणे वेकल चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङ व प्रधानमन्त्री ली केकिङ याङ नापा नाप्लाना दिगु ज्याजुदु अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व रुसिया राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन राजधानी बेजिङ बिस्क नाप्ला धुङकानी पाकिस्तान याथो भ्रमण जुतेङ्गु ख। अमेरिका व इरान दथि हर्मुज याता चाकेको सम्झौता या सम्भावना आन मधु धका युए या छमा वरिष्ठ अधिकारी धागुदु अमेरिकी सैन्य सुविधा दुगु चिक या धनी दे युए या त फेब्रुअरी 28 निते ह्यागु पिन हुया लपी सुई स्वस ड्रोन व मिसाइल आक्रमण यागु युए राष्ट्रपति या सल्लाहकार अनवर गागर सधैदिगु ख। इरानिया नाकाबन्दी हलि न्याङ्कया निगु प्रतिशत चिकौँ वैगुल्ने पङ्ग जुया सङ्गुदु। आ मौसम या जानकारी थौ कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश या हिमालय पहाडी लाग्या वा वैगु धागु दुसा गण्डकी प्रदेश या पहाडी लाग्या चगुनिगु थासे मड्डीको वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागु ख। सुदूरपश्चिम व लुम्बिनी प्रदेश या पहाडी व तराई लाग्या क्वागु फेब वैगु न धागुदु मिग सोनी गले सुईगु डिग्री सेल्सियस दति लुगु क्वाज थौ निगुगु सेल्सियस जति चोनिगु ढुकुमा दुसा ठुकेता आनन्द सकने नादिस मिग सोनिगले सुईगु डिग्री सेल्सियस जति क्वाज लुगु खसा थौ नि गुगु निसे सुई छगु डिग्री सेल्सियस जति क्वाज लुइगु ढुकुमा दु। रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुवन जिताइले नेपाली भाषा या समाचार नेनादिस शुभ।
1: नागरिक लगानी कोषको नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी भई भविष्य सुरक्षित बनाओ। यस योजनामा न्यूनतम मासिक 500 रुपियाँ जम्मा गरेर सहभागी हुन सकिन्छ।
2: नागरिक लगानी कोष।
3: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल, नेपालको समावेशी आवाज।

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवासस्थित विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषामे समाचार। उपसभामुख रुबी कुमारी ठाकुर लहान नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 आ 22 में रहल धार्मिक पर्यटकीय स्थल सलेश फुलबाड़ी तथा लहान 15 स्थित राजदेवी पंचावती मंदिर के भ्रमण कलने वाय भिनसरे सलेश फुलबाड़ी पहुँचकर लोकनायक सलेश के दर्शन तथा पूजा पाठ कलने। भ्रमण के क्रम में उपसभामुख ठाकुर सलेश फुलबाड़ी मधेश के मात्र नहीं देशे के नमूना पर्यटकीय स्थल के रूप में विकास हेबा चाहिए बतौलन। ओहन महत्वपूर्ण स्थल के विकास में पर्याप्त लगानी किया अखन धरे होबल नहीं सकल विषय में संघीय सरकार के ध्यान आकर्षण करबाक विश्वास व्यक्त कलन। वीरता प्रेम के था संग जोड़ल गेल सलेश फुलबाड़ी के दहेज बिना के विवाह करवा वाला स्थल के रूप में विकास कर सकला पर दहेज मुक्त समाज निर्माण में सहयोग पहुँचत बतौलन। लहान 15 स्थित राजदेवी पंचावती मंदिर के भ्रमण के क्रम में उपसभामुख ठाकुर ओतक के व्यवस्थापन आ विकास के प्रशंसा करत सलेह सर्किट संग राजदेवी मंदिर के सेहो जोड़ कर एकीकृत पर्यटक के विकास कैल जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलने। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा सरकार गठन भेल छोट अवधि में कैल गेल नवीनतम कार्य से जनता में आशा जागल बतौलन। राष्ट्र स्वतंत्र पार्टी लिखू गांवपालिका के प्रथम अधिवेशन के आई लिखू छहरे में संबोधन करत मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा देश आ जनता के हित में रखकर सरकार केने कार्य से सरकारी सेवा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भेल सुधार से सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न भेल आयल बतौलन। संचार मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा बीतल समय दिन में राजनीति राज्य के निकाय आ सार्वजनिक सेवा प्रवाह के बिचौलिया नियंत्रण में लक जनता पर कैल गेल अन्याय पर उन्मुक्ति दियाबा सरकार प्रतिबद्ध रहल स्पष्ट कलन। सरकार गठन भेल छोट अवधि में भेल काज कार्यवाही से सामान्य नागरिक के सेहो राहत भेटवा सन सुधार कैल गेल हुनकर कहब छलन। संचार मंत्रालय अंतर्गत नेपाल टेलीकॉम हुलाक लगायत नवीनतम काज करित जनता के राहत देवा में स्वयं योजनाबद्ध रूप में काज करित आल ओ जानकारी देलन। आब वाला 5 वर्ष में रचनात्मक रूप में काज कर जनता के परिवर्तन के महसूस करा कर जनता के चेहरा पर खुशी आनब के सरकार के पहल हेबा को विश्वास दियोलन। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा आधुनिक प्रविधि के वर्तमान युग में सामुदायिक रेडियो के महत्व नहीं घटला सा एहन रेडियो प्रविधि मैत्री होइत आयल जनपेक्षा हिसाबे संचालन हेबाक चाही पर जोर दलन। दक्षिण एशिया के पहिल सामुदायिक प्रसारण सेवा रेडियो सागरमाथा 102.4 मेगाहर्ज के 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सामुदायिक रेडियो थप प्रविधि मैत्री भ जनपेक्षा हिसाबे संचालन हेबाक चाही बतौलन। मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा देश में आम नागरिक तथा बुद्धिजीवी के कारण रेडियो के महत्व एखनो नहीं घटला सा मर्यादित आ उत्तरदायी पत्रकारिता आजुक आवश्यकता रहल में जोर दिलन। वो नैतिक पत्रकारिता जिम्मेवारीपूर्ण संचारक लेल रेडियो सागरमाथा थप प्रविधि मैत्री होइत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे कह शुभकामना दिलन। वो लोक कल्याणकारी विज्ञापन में राज्य 30 करोड़ खर्च कर रहल जानकारी दैत आर विज्ञापन में चल खेल भेला से अखन के लेल ई रोकल गेल बतौलन। नेपालक लेल यूनेस्को के प्रतिनिधि याको तूते 30 वर्ष के यात्रा में रेडियो सागरमाथा समुदाय के आवाज के बुलंद बनाबा में सहयोग करित नागरिक के आवाज के उजागर करबाक लेल सामुदायिक रेडियो के महत्वपूर्ण भूमिका हेबाक धारणा रखलन। यूनेस्को सामुदायिक रेडियो के लेल कार्यक्रम आ फेलोशिप प्रदान करित आलो जानकारी दिलन। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता नेपाल में खोप के प्रभावकारी उपलब्धता के संदर्भ में खोप के लिए ग्लोबल एलायंस के उच्चस्तरीय टोली संग विचार विमर्श कलने। स्विट्जरलैंड जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेबा क्रम में गाभी में उच्चस्तरीय टोली संघ के विचार विमर्श में ओ संक्रमण काल में खोप कार्यक्रम के प्रभावित होब नहीं देव गाभी संघ के निरंतर सहयोग अपरिहार्य रहल बतौलन। ओ नेपाल के सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च एखनो कुल गृहस्थ उत्पादन के लगभग 5% के हाराहारी में मात्र सीमित रहल अवस्था में गाभी संघ के निरंतर सहयोग आ घनिष्ठ समन्वय अपरिहार्य रहल बतौने मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी बतौलन। मंत्री मेहता स्वास्थ्य क्षेत्र के स्तरोन्नति संगे अंतर्राष्ट्रीय अनुदान के ढांचा परिवर्तन वाला आ खोफ खरीद में नेपाल अपने आंतरिक लगानी क्रम से बढ़ावित जाकर अंततः अपने सक्षम हेबाक चाही अवस्था रहल बतौलन। विचार विमर्श में पारस्परिक सहकार्य की निरंतरता देबाक आ संक्रमणकालीन वित्तीय व्यवस्थापन के अवरोध नहीं हेबाक विषय में सहमति भेल मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉक्टर अधिकारी जानकारी दिलन। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय उच्च शिक्षा के लेल विदेश जाय वाला नवीकरण भेल शैक्षिक परामर्शदात्री संस्था सा
मात्रै परामर्श सेवा लेवा लेल आग्रह कयलक अछि। मंत्रालय आर्थिक वर्ष 2082-83 के लेल नवीकरण भेल शैक्षिक परामर्शदात्री संस्था सबके नामावली प्रकाशन करैत ई सेवा लेवा लेल आग्रह कयलक अछि। स्वीकृत प्राप्त संस्था सबके सूची मंत्रालय के सचिव चूड़ामणि पौड़ेल जेठ 6 गते के निर्णय हिसाबे प्रकाशन कयल गेल अछि। मंत्रालय के वेबसाइट में सार्वजनिक सूची में 1471 संस्था सब समावेश अछि। सरकार शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण संबंधी निर्देशिका 2073 बमोजिम अनुमति नहीं लेने विद्यार्थी के झूठ कागज आश्वासन द का आर्थिक ठगी केने संस्था सब के सरकार कार्रवाई अभियान शुरू कयलक अछि। जेठ 1 गति काठमांडू पत्रिका के अवैध तथा शंकास्पद संस्था सब में छापा मार कर पकड़ल गेल मध्य 32 गोटा के नेपाल प्रहरी कार्रवाई के लिए मुद्दा दायर कयने अछि। नेपाल में नए सरवाला रोग सब जेना उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, हृदय तथा रक्त नली आ श्वास प्रश्वास संबंधी रोग समय से पहिने ही होवला मृत्यु के प्रमुख कारण के रूप में देखल गेल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाबे कुल मृत्यु के लगभग 71% हिस्सा नए सरवाला रोग के कारण होइत आयल अछि। संगे सन 2030 धरि में ई दर 79% धरि पहुँचबाक प्रक्षेपण कयल गेल अछि। एहन रोग सब व्यक्ति परिवार तथा समग्र स्वास्थ्य प्रणाली में पड़े वाला भार निरंतर बढ़ा रहल अछि। स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन में आनल गेल नई सरवाला रोग के रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना 2078-82 हिसाबे लगभग 22% नेपाली जनता नई सरवाला रोग के कारण 30 से लेकर 70 वर्ष की उम्र के बीच में अकाल मृत्यु के जोखिम में रहल अछि। बीतल समय अधिकांश घर परिवार में कोनो न कोनो प्रकार के नई सरवाला रोग के रोगी भेट लागल अछि। यद्यपि 2078 माघ 24 गति मंत्री परिषद से स्वीकृत ई महत्वाकांक्षी कार्य योजना से अपेक्षित रूप में नई सरवाला रोग न्यूनीकरण में उल्लेखनीय सुधार आन नहीं सकल अछि। नेपाल में व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली पूर्ण रूप में प्रभावकारी नहीं भेला से नई सरवाला रोग संबंधी राष्ट्रीय मृत्यु दर के तथ्यांक प्राप्त कर अखनो चुनौती रहल अछि। अखन करीब 50% मृत्यु दरता मात्र होबाक अनुमान कयल गेल अछि। सरकारी अस्पताल सब के अंतरंग तथा बहिरंग सेवा में आवय वाला रोगी मध्य अधिक हिस्सा नई सरवाला रोग संग संबंधित रहल तथ्यांक देखौलक अछि। महतरी के सोनमा गांव पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीदेव यादव घूस सहित नियंत्रण में पड़ल छथि। सड़क ढलान योजना के कार्य संपन्न भेलाक बाद भुगतानी करबाक क्रम में विभिन्न बहाना बनाकर सेवाग्राही संग घूस मांग कर रहल सूचना तथा उजूरी के आधार पर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दीवास से खटल गेल टोली हुनका नियंत्रण में लेने अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के सहायक सह प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारी के हिसाबे टोली यादव के सेवाग्राही से 72,000 घूस ल चुकल अवस्था में नियंत्रण में लेलक अछि। संगे हुनका संग से स्रोत नहीं खुजल 83,145 लैपटॉप एकटा मोबाइल दूटा तथा अन्य सरकारी कागजात सेहो बरामद केने सहायक प्रवक्ता अधिकारी जानकारी दिलन। नियंत्रण के क्रम में यादव सवार सरकारी नंबर प्लेट के सवारी साधन से हो जिला महोतरी के गौशाला नगर पालिका वार्ड नंबर 5 निगोल स्थित समसी गौशाला सड़क खंड के गौशाला दिस जा रहल समय नियंत्रण में लेल गेल अछि। अख्तियार के हिसाबे घटना के संबंध में थप अनुसंधान भ रहल अछि। देश के प्रमुख भंसार नाका बीरगंज होइत आर्थिक वर्ष 2082-83 के 10 महीना में भारत तथा अन्य देश दिस 88,22,84,00,000 मोल बरोबरीक नेपाली उत्पादन निर्यात भेल अछि। गत आर्थिक वर्ष 2081-82 के 10 महीना के तुलना में एहि आर्थिक वर्ष के साउन से लकर बैसाख मसांत धरि में 6% सँ निर्यात वृद्धि भेल। बीरगंज भंसार कार्यालय के प्रमुख भंसार प्रशासक कृष्ण प्रसाद मैनाली एहि के जानकारी देलनि अछि। आब खेल समाचार। मधेश क्रिकेट लीग के दोसर संस्करण के उपाधि बड़ा जीतलक अछि। बीरगंज स्थित टीवी शाह नारायणी क्रिकेट रंगशाला में संपन्न फाइनल खेल में बड़ा धौनसा के 128 रन से पराजित कलक अछि। टॉस हार के बैटिंग केने बड़ा 20 ओवर में 6 विकेट के क्षति में 193 रन बनौने छल। बड़ा के लेल सुशांत सिंह 51 रन तथा अर्निको यादव 50 रन के अर्धशतक के योगदान देने छले। धौनसा के लेल रूपेश यादव आयुष यादव समान 2-2 विकेट लेलथ। 194 रन के लक्ष्य पाछू करे धौनसा 14.4 बॉल में 65 रन में समटायल छल। बड़ा के लेल कमल गुप्ता 3.4 ओवर में 13 रन खर्च कर 4 विकेट लेत उत्कृष्ट बॉलिंग प्रदर्शन कलन। अर्निको यादव बैटिंग संगे बॉलिंग में सेहो प्रभावशाली प्रदर्शन करत प्लेयर ऑफ द मैच घोषित भेलथ। प्रतियोगिता भर उत्कृष्ट प्रदर्शन कने बड़ा के कप्तान अनिल शाह 157 रन आ 13 विकेट सहित प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित भेलथ। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के आयोजना में भेल प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के 8 जिला के टीम सहभागी छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
ताइवान के आपातकालीन व्यवस्थापन ब्यूरो के हिसाबे उत्तरी चीन के सांगसी प्रांत में भेल कोयला खाने दुर्घटना में 82 गोटा के मृत्यु भेल त अन्य 9 गोटे अखनो बेपत्ता रहल छे। स्रोत के हिसाबे ताइवान काउंटी के ल्यू सेन्यू कोयला खानी में गैस विस्फोट भर दुर्घटना भेल छल। प्रांत सरकार उद्धारकर्ता चिकित्सा कर्मचारी सहित 755 गोटे के घटनास्थल में उद्धार के लिए तैनात कयने उद्धार कार्य जारी रहल जनौलक अछि। जम्मा 123 गोटे के उपचार के लिए अस्पताल पठाएल गेल मध्य 2 गोटा के अवस्था गंभीर रहल त अन्य 33 गोटे घर घूरल जनाएल गेल अछि। खानी दुर्घटना में संबंधित कंपनी के जिम्मेवार व्यक्ति के कानून हिसाबे नियंत्रण में लक अनुसंधान शुरू कयल गेल ब्यूरो जनौलक अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पांचथर में बीती रात हुई लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से घरों पुलों समेत भौतिक संरचनाओं को नुकसान। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अवरुद्ध। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वालों से केवल नवीकृत शैक्षिक परामर्श संस्थाओं से ही सेवा लेने का शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय का आग्रह है। पश्चिमी तराई के जिलों में आने वाले सोमवार तक गर्मी और लू चलने की संभावना। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ने सतर्कता अपनाने की अपील। और चीन के सांगशी प्रांत की कोयला खदान में हुए हादसे में 90 लोगों की मौत, 9 अभी भी लापता। अब समाचार विस्तार से। बीती रात हुई लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ हुआ भूस्खलन से पांचथर के यांग वरक और हीलीहांग गांव पालिकाओं के विभिन्न क्षेत्रों में घर, झूला पुल तथा निर्माणाधीन पुल बह जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला पुलिस कार्यालय पांचथर के एसपी अनिश कुमार कर्ण के अनुसार यांग वरक गांव पालिका एक स्थित लांबा खोला में ऊपर से आए भूस्खलन ने स्थानीय लोगों के घर और गोठ बहा दिए। इसी तरह यांग वरक एक लामीटार स्थित भीतरी सड़क खंड में लामीटार से चामलिंग डाड़ा को जोड़ने वाला लगभग 100 मीटर लंबा लोहे का झूला पुल भी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ है। उधर हीलीहांग गांव पालिका 2 लिंबुनी पुल स्थित तमोर कॉरिडोर सड़क खंड में निर्माणाधीन बेली ब्रिज को भी बाढ़ से भारी क्षति पहुंची है। वहीं यांगबरक गांव पालिका 2 दोभान स्थित पुष्पलाल मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अंतर्गत मेवा खोला पर निर्माणाधीन पक्का पुल भी बाढ़ के साथ आए पत्थर, मिट्टी और पानी में बह गया, जिससे वाहनों का संचालन ठप हो गया है। लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से अवरुद्ध सड़क को खोलने का प्रयास जारी है तथा अब तक किसी प्रकार की मानवीय क्षति नहीं हुई है। ये जानकारी पांचथर के प्रमुख जिला अधिकारी वासुदेव दाहाल ने दी। इसी तरह बीती रात इंद्रावती नदी में आई बाढ़ के कारण मोटरेबल पुल को नुकसान पहुंचने से यातायात सेवा बाधित हो गई है। पांचथर और तापलेजुन की सीमा से बहने वाली इंद्रावती नदी ने पुल को क्षति पहुंचाई, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। तापलेजुन के सिद्धिंग गवा गांव पालिका 4, सावलाखू और पांचथर के यांग बरक गांव पालिका 4 थरपू को जोड़ने के लिए इंद्रावती नदी पर बना मोटरेबल पुल बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया है। साबलाखू के स्थानीय निवासी संजय पंदाक के अनुसार शुक्रवार रात इंद्रावती नदी में आई बाढ़ ने पुल को क्षति पहुंचाई। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों से केवल नवीकृत शैक्षिक परामर्श संस्थाओं से ही परामर्श सेवा लेने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने आर्थिक वर्ष 2082-83 के लिए नवीकृत शैक्षिक परामर्श दात्री संस्थाओं की सूची प्रकाशित करते हुए ये अनुरोध किया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची में कुल 1459 संस्थाएं शामिल है। सरकार ने शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण संबंधी निर्देशिका 2073 के अनुसार बिना अनुमति संचालित छात्रों को झूठे दस्तावेज और आश्वासन देकर आर्थिक ठगी करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में जेठ 1 को काठमांडू उपत्यका में अवैध तथा संदिग्ध संस्थाओं में छापेमारी कर गिरफ्तार किए गए 32 लोगों के खिलाफ नेपाल पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शैक्षिक परामर्श क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और पुलिस के समन्वय में देश भर में अभियान चलाने की भी जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ने पश्चिम तराई के जिलों में आज से सोमवार तक अत्यधिक गर्मी और लू चलने की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। प्राधिकरण के अनुसार लुम्बिनी और सुदूर पश्चिम प्रदेश के तराई क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक पहुंच सकता है। दांग, बांके, बर्दिया, कैलाली और कंचनपुर सहित कई जिलों को उच्च सतर्कता सूची में रखा गया है। अत्यधिक गर्मी के कारण थकान, चक्कर, सिरदर्द, बेहोशी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। लोगों से दोपहर में घर से बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और बच्चों को तेज धूप से बचाने की अपील की गई है। काठमांडू उपत्यका से बाहर जाने वाली लंबी दूरी की सार्वजनिक बसों में अब यात्रियों के सामान के लिए लगेज टैग प्रणाली लागू की जाएगी। यात्रियों के सामान की सुरक्षा, बैग खोने या बदलने की समस्या रोकने और सार्वजनिक यातायात को अधिक व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ये व्यवस्था शुरू की जा रही है। काठमांडू उपत्यका ट्रैफिक पुलिस कार्यालय और राष्ट्रीय यातायात व्यवसायी महासंघ के बीच हुए समझौते के अनुसार आगामी जेठ 15 गति से लंबी दूरी की बसों में यात्रियों के सामान पर विशेष टैग लगाया जाएगा। यात्रियों को दिए गए टैग नंबर और बस में रखे गए सामान के नंबर का मिलान होने के बाद ही सामान सौंपा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इस प्रणाली से लगेज चोरी, सामान गुम होने और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। यातायात व्यवसायियों ने बताया कि हवाई यात्रा की तरह अब बस सेवा भी आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। इसी बीच ट्रैफिक पुलिस ने सड़क और सवारी लक्षित मानसून जन्य आपदा न्यूनीकरण अभियान 2083 भी शुरू किया है। वर्षा के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं, भूस्खलन और जलभराव जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वाहन जांच, चालक स्वास्थ्य परीक्षण और यात्रियों के लिए जनचेतना कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: 4G

0: नेपाल टेलिकॉम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमलसिन्हा ने कहा है कि सरकार गठन के बाद कम समय में किए गए नए कार्यों से जनता में उम्मीद जगी है। नुआकोट में आज आयोजित कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर तिमलसिन्हा ने कहा कि पिछले समय में राजनीति के कारण राज्य की निकायों और सार्वजनिक सेवा प्रवाह पर बिचौलियों का नियंत्रण हो गया था, जिससे जनता पर हुए अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्तमान सरकार अगले 5 वर्षों में रचनात्मक कार्य कर जनता को परिवर्तन का एहसास कराने और लोगों के चेहरे पर खुशी लाने में सफल होगी। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमलसिन्हा ने कहा है कि सामुदायिक रेडियो को तकनीक अनुकूल बनाते हुए जन अपेक्षाओं के अनुसार संचालन किया जाना चाहिए। दक्षिण एशिया की पहली सामुदायिक प्रसारण सेवा रेडियो सगरमाथा के 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर तिमलसिन्हा ने कहा कि देश के आम नागरिकों तथा बुद्धिजीवियों के कारण रेडियो का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है, इसलिए मर्यादित और उत्तरदायी पत्रकारिता आज की आवश्यकता है। सड़क डिवीजन कार्यालय बांके ने सार्वजनिक सड़क क्षेत्र पर अतिक्रमण कर बनाए गए घर, टहरा तथा अन्य संरचनाओं को हटाने के लिए पुनः सूचना जारी किया है। कार्यालय द्वारा जारी सूचना में सार्वजनिक सड़क एन 2031 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग तथा सार्वजनिक सड़क सीमा के भीतर स्थायी या अस्थायी संरचना निर्माण करना प्रतिबंधित होने की स्पष्ट जानकारी देते हुए अतिक्रमित संरचनाओं को तत्काल हटाने का आग्रह किया गया है। कार्यालय के अनुसार करनाली राजमार्ग के विभिन्न क्षेत्रों तथा कोहलपुर नेपालगंज सड़क खंड के दोनों ओर बनाए गए संरचनाओं के कारण सड़क विस्तार और स्तरोन्नति कार्य प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए सूचना प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर संरचनाएं हटाने को कहा गया है। कार्यालय ने निर्धारित अवधि के भीतर संरचनाएं न हटाए जाने पर कानून अनुसार स्वयं हटाने तथा उससे होने वाले पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति या संस्था से वसूल किए जाने की जानकारी दी है। नेपाल टेलीकॉम ने डोल्पा के छारका तांगसोंग गांवपालिका के केंद्र कागकोट में 4G सेवा शुरू की है। नेपाल टेलीकॉम के प्रवक्ता कमल लामिछाने ने जानकारी दी कि समुद्र सतह से 4200 मीटर ऊंचाई पर स्थित मुकोट के टावर में 4G उपकरण जड़ान कर माइक्रोवेव रेडियो के माध्यम से 4G सेवा संचालन में लाई गई है। टेलीकॉम के अनुसार अब डोल्पा जिले की डोल्पो बुद्ध गांवपालिका, शे फुकसुंडो गांवपालिका तथा मनांग की नारपा भूमि गांवपालिका में 4G सेवा पहुंचना बाकी है। निकट भविष्य में इन स्थानीय निकायों में भी 4G सेवा विस्तार को निरंतरता दी जाएगी। 4G सेवा विस्तार के साथ स्थानीय निवासियों, ट्रैकिंग मार्ग के यात्रियों और पर्यटकों की संचार पहुंच आसान होने के साथ विभिन्न प्रशासनिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक गतिविधियों में सहयोग मिलने की उम्मीद की गई है। साथ ही दुर्गम हिमालयी क्षेत्र को आधुनिक डिजिटल नेटवर्क से जोड़कर समग्र क्षेत्रीय विकास में भी सकारात्मक योगदान मिलने की अपेक्षा की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन में एक कोयला खदान में धमाका हुआ। इस हादसे में करीब 90 लोगों की मौत हो गई है, 9 लोग अभी भी लापता है। ये जानकारी चीन के सरकारी मीडिया ने दी है। धमाका शुक्रवार को स्थानीय समय अनुसार शाम 7:29 हुआ। तब खदान में 247 मजदूर काम कर रहे थे। मौके पर बचाव अभियान जारी है। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया, साक्षी प्रांत में तोंग झोंग ग्रुप की खदान में हुए गैस धमाके वजह से हुए हादसे में 90 लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है। हादसे के बाद चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने कहा कि घायलों का इलाज किया जा रहा है, बाकी लोगों को खोजने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जाएगी और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पांचथर में बीती रात हुई लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ व भूस्खलन से घरों पुलों समेत भौतिक संरचनाओं को नुकसान, मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अवरुद्ध। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वालों के लिए केवल नवीकृत शैक्षिक परामर्श संस्थाओं से ही सेवा लेने का शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय का आग्रह है। पश्चिमी तराई के जिलों में आने वाले सोमवार तक गर्मी और लू चलने की संभावना। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ने सतर्कता अपनाने की अपील। और चीन के सांगशी प्रांत की कोयला खदान में हुए हादसे में 90 लोगों की मौत, 9 लोग अभी भी लापता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
2: फोर जी LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
3: अनन्त सम्भावनाको पुञ्ज, गतिशील मानव जीवन, कर्मशील सारा संसारका नेपाल र नेपाली मन,
4: दूर सुदूर क्षितिजका नेपाली अनुभव शब्द चित्रमा कोर्दै स्वदेशको सम्झना र परदेशको अनुभव सुन्ने सुनाउने एउटा चौतारी कार्यक्रम घर देश परदेश। कार्यक्रम घर देश परदेशमा स्वागत छ। म प्रस्तुता हेमन्त उप्रेती। विश्वव्यापीकरणसँगै यातायात र सूचना प्रविधिको विकासले अझ साँगुरो हुँदै गरेको आजको संसारमा रोजगार, स्वरोजगार, वृत्ति विकास, शैक्षिक प्राज्ञिक उन्नयन, तिनको प्रयोग उपयोग र सुविधामय जीवनको आकांक्षामा मानिस संसारभर फैलिँदो छ। नेपालीहरू मात्र यसमा अपवाद छैनन्। कर्मक्षेत्रमा जहाँ जहाँ रहे पनि स्वदेश र जन्मभूमिप्रति सदा कृतज्ञ रहने नेपाली मनहरूका स्वदेश विदेशका जीवन अनुभवहरू खोतल्ने एउटा प्रयास हो कार्यक्रम घर देश परदेश। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट हरेक शनिबार राति 10 बजेको समाचारपछि यो कार्यक्रम प्रसारित हुन्छ। साथै रेडियो नेपाल online.com र रेडियो नेपाल मोबाइल एपमा पनि यो कार्यक्रम संसारभर सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ बेलायतमा रहनुहुने कुल आचार्य। पर्वत जिल्लाको धाइरिङमा जन्मी हुर्की शिक्षण पेसापछि झण्डै 29 वर्ष अघि जर्मनी पुग्नुभएका आचार्यले त्यसपछि बेलायत पुगेर व्यावसायिक क्षेत्रमा ख्याति कमाउनु भएको छ। बेलायत पुगेपछि सिप आर्जन गर्न र आफ्नै रेस्टुरेन्ट व्यावसायिकतापट्टि लाग्नुभएका पाक कलामा निपुण कुशल सेफ आचार्यको व्यवसायले सन् 2004 बेस्ट रोल अफ द इयर BBC इभिनिङ स्ट्यान्डर्ड, हाउस अफ कमनको टिफिन कप, 2013 बेस्ट रेस्टुरेन्ट अवार्ड जस्ता प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त गरेको छ। सन् 2006 बेलायतमा स्थापना भएको होलिकाउ ग्रुपका सञ्चालक आचार्यको संलग्नता नेपालको बैंकिङ, जलविद्युत, पूर्वाधार, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा पनि रहेको छ। सुशिक्षित समाजसेवी पण्डित पिताको प्रेरणाबाट युवा वयदेखि नै समाजसेवी व्यक्तित्व बनाउनुभएका आचार्य सन् 2003 नै गैर आवासीय नेपाली संघका अभियन्ता हुनुहुन्छ भने त्यसका विभिन्न तह र पदहरूमा काम गर्दै सन् 2021 उहाँ NRNA अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्ष रहनुभयो। बाल्यकालमा संस्कृतबाटै पठन पाठन सुरु भएको र पछि पनि संस्कृत पढ्ने तीव्र इच्छा हुँदाहुँदै पिताको निधनपछि त्यो बाटो मोडिएको बताउनुहुने आचार्यका नेपालमा व्यावसायिक लगानीका अतिरिक्त स्वास्थ्य संस्था, जन्मथलोमा विद्यालय स्थापना लगायतका समाजसेवाका क्षेत्रमा थुप्रै योगदान रहेको छ। विदेशमा 8-10 लाख रुपियाँ कमाएर फर्किएपछि बागलुङ बेनीतिरै केही व्यवसाय गर्छु भनी जर्मनीमा चेरी टिप्ने कामबाट वैदेशिक जीवन सुरु गर्नुहुने आचार्यको धारणा छ। इमान्दारीपूर्वकको काम र त्यसबाट प्राप्त सन्तोष नै सुख हो। त आदरणीय श्रोता, आजको कार्यक्रममा सुनौ करिब 26 वर्षदेखि बेलायतमा रहनुहुने, समाज सेवा र व्यवसायमा ख्याति आर्जन गर्नुभएका गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्यसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी। स्वदेश आउनुभएका बेला उहाँसँग कुराकानी गरेका हौ। एकैछिन यो संगीतबाट अघि बढौं, त्यसबीच कुराकानी जोड्नेछौ। दिपेश किशोर भट्टराईको स्वर, रमण घिमिरेको रचना र न्यू बज्राचार्यको संगीत।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कल

0: समावेशी आवाज राष्ट्रीय रेडियो राष्ट्र को संचार।
1: रेडियो नेपाल नया नेपाल को समावेशी आवाज राष्ट्रीय रेडियो राष्ट्र को संचार।